0: की फतेह।
1: शहीद भाई हरदीप सिंह निजर गुरमत स्कूल दे विद्यार्थियों वालों आप जिया नू रह राज साहब जिया दा पाठ सरवण करवाया है। अरदास बेनती बड़ी खुशी हुंदी है जो साडे छोटे छोटे बच्चे लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे स्वरूप आ ते बेटी ने आप जी नू पवित्र हुक्मनामा साहब सरवण करवाया है। तो संगत जीओ किड़िया बख्शिशा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने साडे इन्हां बच्चियां ते कीतियां ने कि जो छोटियां छोटियां उमरां और सतगुरु महाराज साहब जी ने एडिया वड्डियां बख्शिशा बच्चियां ते कीतियां लड़ीवार गुरबाणी दे पाठ सरवण करवाउंदे ने। हुण साध संगत जीओ बच्चियां वालों आप जी नू आरती आरता रस भिन्ने शब्दां दा कीर्तन सरवण करवाया जावेगा। सिमरत कौर, अमनान कौर, मनप्रीत, मनरीत कौर, जपदीप कौर, महताब कौर, भाग सिंह, शान सिंह बच्चे आप जी नू आरती आरता शब्द कीर्तन सरवण करवाउणगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जोरी नमो कर जोरी गुरु हर किशन मनावो बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला वाहिगुरु परम कृपाला।

0: निंदा कदी ना सुने। जिथे गुरु की निंदा हो रही है, रब की निंदा हो रही है, सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या उथे बंदा जड़ा है अपने कन्ना दे नाल ओ निंदा ना सुने।
1: भग हे तहे ते कै तिस हना।
0: जिस थां ते गुरु की निंदा हो रही, परमेश्वर दे प्यारियां दी निंदा हो रही, उत्थों ओ जगह नूं ही त्याग दे, भाव ओ निंदा दे बचन अपने कन्ना विच ही ना जान दे। क्योंकि जदों कन्ना दे राही बंदा सुनन दे अंदर रस लैण लग पैंदा, ते फिर ये निंदा दा रस ही मन नूं मैला कर देंदा। ये मन दे अंदर मैल बनती जाती है। कोई भी मन करके रस असी परमात्मा दे नाम तो बिना जड़ा भी लैण लग पैंदे हाँ, मन उस संसार दे अंदर बेख रस दे नाल मैला हो जाता, दूजा भाव जड़ा है वह पैदा हो जाता है। इस करके गुरु की निंदा, गुर की निंदा सुने न कान, भेटत संग करे कृपान। ते जे बंदा हटदा ही नहीं है ते फिर उस पापी नू निंदक नू जड़ी है उस दी निंदा दी सजा भी परमेश्वर दे प्यारे देंदे ने। अकाल पुरख वाहिगुरु आप भी अपने हुक्म दे अंदर उन्हां निंदकां नू उन्हां दे कीते होए इस गुनाह दी सजा देंदा। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने जिथे गुरु दी निंदा हो रही, जिथे परमात्मा दी निंदा हो रही, उस जगह नू त्याग दवे।
1: शर मतसर तृष्णा को तज कै।
0: शर मतसर तृष्णा को तज कै। महाराज बड़े कीमती बचन अपनी मुबारक रसना तो गुरु के सिखा नू बख्शिश कर रहे हैं। कली कली चीर साढ़े आत्मक जीवन दे अंदर साढ़े वास्ते बहुत वड्डी महाराज दी ये दात है। एक एक बचन महाराज दा जेड़ा अपने मन दे अंदर दृढ़ कर लेंदा है। ये कीमती हीरे मोती ने, ये कीमती रतन है, ये सानू वड्डे गुनाहां तो बचाउंदे ने ते उन्हां शुभ गुणा नाल जोड़दे ने। जिस शुभ गुणा की बरकत दे नाल जीवन दे अंदर सुख प्राप्त हुंदा है, आनंद प्राप्त हुंदा है, मालक दे घर ढोई मिलदी है। महाराज कहिंदे ने शर, शर तो भाव है छल, किसे दे नाल छल करना, धोखा करना। कोई बंदा साडे काम दे थां दे उत्ते आ गया, ना समझ है, अनजाण है, ते उस दी ना समझी दा बंदा फायदा उठा ले। आ लखां रुपये जड़े ने लोक ओ बंदे जड़े बेचारे ना समझ हुंदे ने बाहर भेजण दे नां उत्ते गलत फाइलां बना बना के, गलत वीजे लवा लवा के लखां रुपये जड़े उन्हां कोलों ठग लैंदे ने। हुण बंदे नूं, हर बंदे नूं सब कुछ नहीं पता। इह तां जिहड़ा दूजा बंदा जिस नूं पता है उस दी नीयत ते डिपेंड करदा वी इह दूजे दी ना समझी दा किते नजायज फायदा तां नहीं उठाउंदा। एक बंदा किसी डॉक्टर को ले जांदा है ते वह तो मरीज है, वह तो दुखी है, हुण जिहड़े ने उहदा इलाज करना ये तो उहदी नीयत है भी उस नूं दुखी नूं किते नजायज जिहड़ा है उस नूं लुट्टण की कोशिश ना करे। महाराज कहिंदे ने किसी दे नाल छल ना करे। मत्सर, मत्सर तो भाव है ईरखा ना करे, किसी नूं भी मन करके ईरखा ना करे, किसी की वस्तु देख के, किसी की वडियाई देख करके। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने मन दे अंदर उस दे प्रति ईरखा दा वैर दा भावना रखे। शर मतसर तृष्णा को तज कै, और मन दे अंदर जड़ी तृष्णा है जड़ी बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की जदों मन दे अंदर बड़ी प्रबल इच्छा हो जाती है, बंदे नूं सुकून ही नहीं मिलता भी आ भी मिल जाए, आ भी मिल जाए, इहदे तो बिना मैं रह ही नहीं सकता, जिवें भी हो सके, वह फिर मन करके बेचैन रहिंदा, उहदे मन की भटकना बनी रहिंदी है, उहदे लई फिर जायज नजायज सब कुछ करन वास्ते तैयार हुंदा। ते मन उहदा कदी भी जिहड़ा है वह शीतल नहीं हुंदा। इस करके महाराज ने तृष्णा नूं अगन कहा है। तृष्णा अगन जलै संसारा, जल जल खपै बहुत बेकारा। महाराज कहिंदे ने फिर वह मन करके तपदा रहिंदा है इस तृष्णा दी अगन दे अंदर। इस करके गुरु अमरदास महाराज जी गुरु के सिखां नूं उपदेश दिंदे ने, गुरु का सिख अपने मन दे अंदर कदी छल दा, कदी ईरखा दा, और कदी तृष्णा दा भाव नहीं रखदा, इन्हां नूं त्यागदा है।
1: निज आछो जन ਹੈ ਹਰ ਭਜ ਕੈ।
0: ਬਸ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਸਾਕ ਪੀ ਭੱਜ ਖਲੈ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਕਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਧਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਇਹ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਹੈ।
1: ਸੁਖ ਪਰਲੋਕ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਦਾ,
0: ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ।
1: ਜਗ ਸੁਖ ਮਹੇ ਉਰਜਹੇ ਨਹੀਂ ਕਦਾ,
0: ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਜਗ ਸੁਖ ਮੈਂ ਉਰਜੈ ਨਹਿ ਕਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਫਸਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲੀਪ ਆਵੈ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚੇਤਨਾ ਆਵੈ ਨਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗ ਸੁਖ ਮੈਂ ਉਰਜੈ ਨਹਿ ਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਉਲਝ ਜਾਵੇ।
1: ਗੁਰ ਸੇਵਨ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ,
0: ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ,
1: ਇਸ ਤੇ ਨੀਕੋ ਅਪਰ ਨ ਬਰਨੋ,
0: ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਕੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ, ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ, ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਨੀਕੋ ਅਪਰ ਨਾ ਬਰਨੋ,
1: शुभ मत इनको त्याग हे नाही।
0: और गुरु दी दित्ती हुई जड़ी शुभ मत है, शुभ सिखिया है, महाराज कहिंदे ने इनू कदी भी त्यागे ना, भाव कदी ए ना भुले जो मेनू गुरु ने बचन आख्या है उस दी अपनी जिंदगी दे अंदर कमाई करे।
1: मिलियो रहा सत संगत माही।
0: और हमेशा की सत संगत दे अंदर जुड़ के रहे, कुछ संगत दा त्याग रखे, चंगी संगत करे, चंगी संगत विच रहंदिया होया मन नू चंगी प्रेरणा मिलती है, चंगी प्रेरणा दे नाल जीवन दे अंदर चंगे कर्मां विच बंदा गलतान हुंदा, ते जेड़ा मन करके माड़ी संगत विच बैठ जांदा माड़ी संगत विचों माड़ी प्रेरणा मिलदी है। कबीर मारी मरों कुसंग की, केले निकट ज्यों बेर, ओ झूला ओ झूर चीरिया साकत संग ना हेर। भगत कबीर जी कहिंदे ने कुसंगत दी मार इदां दी हुंदी है जिवें केले दा बिरख बिरख बेरी दे लागे खड़ा होवे, जदों हवा चलदी है नेरी चलदी है बेरी झूलदी है, पर बेरी दे लागे जड़ा केले दा बिरख है ना वह बेरी दे कंडियां दे नाल ही उहदे पत्ते कट्टे जांदे ने, वह सिर्फ उहदा इही कसूर है कि वह बेरी दे लागे है, बेरी दे कंडियां नाल उस केले दे बिरख दे पत्ते चीरे जांदे ने जिहड़ा उस बेरी दे संग खड़ा। इह कुसंगत दी मार है, ते जिहड़ी सतसंगत है उह तां चंदन दी तरां है। कबीर चंदन का बिरवा भला, बेरियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहै बसै जो चंदन पास। जिहड़े चंदन दे लागे बूटे हुंदे ने उह चंदन तों सुगंधी लैंदे ने, पर जिहड़े बेरी दे लागे हुंदे बेरी दे कंडियां दे नाल चीरे जांदे ने। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिथे सानू गुरु की बाणी दी दात बख्शिश कीती है उथे नितां प्रति सत संगत करन दा महाराज ने हुक्म सानू कीता है। तो गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने मन करके हमेशा सत संगत नाल जुड़िया रहे।
1: गुरबाणी सो मन अनुराग हे।
0: गुरबाणी दे नाल अपने मन दा प्रेम करे। एक हुंदा नेम एक हुंदा प्रेम। नेम वधिया गल है, नेम नाल बाणी पढ़नी चाहीदी है, पर नेम तो अगे है प्रेम। नेम दे नाल कीती सेवा ठीक है, पर नेम तो भी अगे है प्रेम नाल कीती हुई सेवा। गुरु अमरदास महाराज नूं किसे ने पुछिया सी महाराज नेमी दी सेवा वड्डी के प्रेमी दी सेवा वड्डी, ते गुरु अमरदास महाराज ने आखिया सी नेमी तो वड्डी सेवा है प्रेमी दी। गुरु अमरदास महाराज जी दे दो जवाई सन, भाई रामा जी और भाई जेठा जी, सेवा दोवें ही करदे ने, दोवें ही सेवा करदे ने, पर भाई रामा जी नेम नाल सेवा करदे, पर भाई जेठा जी प्रेम नाल सेवा करदे ने। जदों महाराज ने परचा बनाया छड़े बनाण दा हुक्म कीता ते दोवां जवाइयां ने छड़े बनाए, गुरु अमरदास महाराज ने कह दिता छड़े ठीक नहीं बनाए, भाई रामा जी ढा दिओ। जदों भाई जेठा जी ने छड़ा बनाया गुरु अमरदास महाराज कहण लगे भाई जेठा जी ढा दिओ, ए तो नीकी नहीं बनाई, बैठन हेत न हमको, भाई नहीं ठीक बनी। चार दिन महाराज गुरु अमरदास पातशाह जी उन्हां दे बनाए थड़े टवांदे रहे भी वधिया नहीं बने, ते पंजवे दिन भाई रामा जी ने हाथ खड़े करते, कहण लगे महाराज मैं नहीं इस तो वधिया थड़ा बना सकता, तुसी बजुर्ग हो गए हो, हुण तुहाडी अपनी याददाश्त कमजोर हो गई, जो तुसी कहने हो जिद्दां कहने हो मैं तो उदां ही बना दिन्ना। ते जदों भाई जेठा जी नूं आखिया सी, भाई जेठा जी दीआं अखां दे विच हंझू सन, सीस चुका के कहण लगे महाराज तुसी किन्ने बख्शिंद हो, मैं किन्ना भुलण हार हाँ, बार बार समझाउंदे हो मेरी खता है, मेरी खता बख्शो, किरपा करो मेरे सीस दे उत्ते हथ रखो, मैं फिर थड़ा बनावा। गुरु अमरदास महाराज कहण लगे यह है नेम ते प्रेम दा फर्क। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ने गुरु की बाणी दे प्रति मन दे अंदर प्रेम पैदा करो।
1: पठत सुनत जब मीठी लग हे।
0: पढ़दे हां सुनदे हां जदों गुरु की बाणी मिठी लगन लगदी है
1: तब जन हे मम होए कल्याण हे।
0: उस वेले समझो कि हुण ए मालक दी किरपा वरत रही है, हुण गुरु दी बख्शिश हो रही है ते मेरा कल्याण हो रहा है।
1: सुन गुर शब्द कमावन ठान।
0: और गुरु दे बचन सुन करके उस दी महाराज कहते ने गुरु के सिखो कमाई करो तो सतगुरु सचे पातशाह जी कृपा करन अपने दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम बाणी दियां दातां बख्शन जी। सतगुरु जी की बख्शिश दे नाल 15 कु दिनां दा समा आप संगत दी शब्द विचार राही गुर इतिहास दी विचार दी सेवा प्राप्त होई। इन्हां दिनां दे अंदर सतगुरु महाराज जी दी पावन बाणी दी विचार करदिआं होईआं बेअंत भुल्लां दी खिमा जी धन्नवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दा आप समुची संगत दा। आओ अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के संपूर्ण करिए जी।
1: तब जन हे मम होए कले अन हे सुन गुर शब्द कमावन ठन हे।
0: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
2: ਇਹ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਸਪਾਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ 1984 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 8 ਜੂਨ ਤੋਂ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। 8-9 ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 6-9 ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦਰਬਾਰ, 11-18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਤਮ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ। 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਗ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਰ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

0: है।
1: मह पद ते विश्राम रखना, नीकी कीरी मह काल नाम पोला ही, काल पोला जे उचारण करना, कल नहीं कह देना जां कल नहीं जोर नहीं देना, कल नाम कला, कला नाम शक्ति, वह वाहिगुरु निक्की जी कीड़ी दे विच भी अपनी कला नाम शक्ति रख दिंदा है, बख्शिश करके जो मर्जी भस्म करे लश्कर कोट लख है। अगली पंक्ति च दस दे भी निक्की जी कीड़ी की कर सकती है, सारी वड्डी दे करोड़ां लखां दा जिहड़ा लश्कर वड्डी फौज है ना, उहनूं निक्की जी कीड़ी भस्म कर सकती है, वाहिगुरु की शक्ति जे इक कीड़ी च रख दित्ती जावे।
0: ਭਸਮ

0: कह आप नहीं कछ भरम सहस सियानप लया न जाइय नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत पारसत चरण गात निर्मल रीत
1: गात, गात
0: पारसत

जे विद मन को संसार चूकै पावनिद पार परों, जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधक डरों। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो, पस

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: इसमें वृथा कोई ना है
1: प्रेम मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनाशी प्रभ आपे आप
1: अपन की या कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: गत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह है
0: रब की जोत सगल कट सो है
1: धनवंता होए क्या को घर पै
0: जा सब कुछ किसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: जे को होए वह दाथार
0: जिस देन हार जाने गा वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हम रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थमे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने असथमन
1: ज्यो पाखान नाम चढ़त रह
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिरलाई है
0: गुर लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग दूत सह चितार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे फिरे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: साजिब मान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कह सब कोई
0: मुखो जलहर दर कह सोए
1: एहो व्यापार बिरला व्यापार है
0: नानक ताकै सतगुर हार है
1: तेन साध के धोई धोई पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध उपर जाइया कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अनक बिगन ते साधु राख है
0: हर गुण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: भूखे कौ देव ते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरु लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिसका करना जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जा सदा सदा दिन रैणी
0: शक्ति उज निर्मल ए करनी
1: कर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: जिस दिन आवे हर प्रभु चीत
1: भगत भगत सुनिया तिह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सत्ता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट सचा आकार
0: सच पर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सो जन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ तिन
0: सह बुझाए नानका जिस होए सो परसन अष्टपदी
1: अवनासी प्रभ मन मह राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: इससे परे नाहीं किछ होए
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: निर्पन ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाऊं
0: नानक कै मन हे नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जा का नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: हंद रूप मंगल सद जा कै
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: अपमत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: त्याई त्याई भक्तां सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाहे
0: सगल देव हारे अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाए
0: जन्म रह फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विसार
0: रबे बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे थिन माहे
0: पूर रहे हो पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
0: सत के बल प्रधान
1: करतूत सत सत जा की वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समानी
1: सत कर्म जा की रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत्त
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की या सब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सृष्टि सो करना है हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक जोत स्वभाव है सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
1: रब के रंग राज जन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जाके संगत रह संसार
1: जन का सेव सो वट भागी
0: जन के संग एक लिव लागी
1: गुण गोबिंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसनहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत ध्यानहार
1: आप सत सत सवधारी
0: आपे गुण कारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: बुजनहार को सत सब होई
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जनमानिया
0: कर्ण करावन तिन मूल पछाने
1: जानकर हृदय विश्वास प्रभ आया
0: तत के अंत समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजे ते समाहे समाना
1: बस माही ले बस गडाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: प्रभु का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभु पालन हारा
0: सेवक की रख निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभु धारै
0: नानक सो सेवक सास सास समार
1: अपने जान का पर्दा ढाकै
0: अपने सेवक की सर पर रख
1: अपने दास को दे वडाई
0: अपने सेवक को नाम
1: अपने सेवक की आप पत रख
0: ताकि कदमित कोई न लख
1: रब के सेवक को न पहुँचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मानस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य वृथे जात
1: मारे न रख अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जब नानक प्रभु लख बडानी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: मरते मन तन तरपी है
1: नाम रत्न जन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न हिंद दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: मूर्त बैठ सोभत नाम
0: रहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रब अपने जन कीनी दात
1: करे भक्त आत्म कह चाय
0: रब अपने से रहे समाये
1: जो हो वाह हो वत सो जान
0: रब अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: रहो नानक से जन पूरे
1: मर मेरे तिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जन जन अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पावे
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियान पसगली छाड़
0: इस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: तिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण गा अष्टपदी
1: सतगुर से की करे प्रतपाल
0: सेवक औगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिर
0: गुर बचनी हर नाम उचर
1: सतगुर सिख के बंधन काट
0: गुर का सिख बकार ते हट
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख बड़ भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवार
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समार
1: गुर के गृह सेवक जो रह
0: गुर की आज्ञा मन में सह
1: आप उसको कर कष्ट न जनावे
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावे
1: मन बेचा सतगुर के पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत हो इने कामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्वे गुर का मन मान
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हरनाओ
0: अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आज पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म ने जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश परम
1: सह सियान पलया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: दर्शत चरण गत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुनकर वचन करन आगामी
0: मन संतोखा तंपति जाने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्ट पे कह हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भाव तिस लए मिलाए
1: देवाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: कहू बोल न पहुंचत पुरानी
0: अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी
1: मेरा हार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत किने न पाई
1: अनक भक्त बंदन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतगुरु अपने
0: नानक जिस पर साधा सा प्रभु जपने
1: यो हर रस पावे जन कोई
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाके मन पर टे गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेश वको दे
1: मोह माया के संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक भ्रम बहुत दुख ते नासे
1: संत माही ठांड बरताई
0: अंध भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: भव चुका निर्भव होए बसै
0: सगल व्याध मन ते कह नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: खित पाई चुके भ्रम गमन
0: सुन नानक हर हर दस सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने जगत प्रभ आप नाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सब निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रविया रूप रंग
0: भय प्रकाश साध का संग
1: राज रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चल बिन भजन बिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी
1: संत जना मेन करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अवरो पाप समीत पसारो,
0: शर्म कमल विद मैं उरतारो,
1: कर्म कान सो पाप समर्थ,
0: दृढ़ कर गहो नाम हर बथ,
1: एहो तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार कुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाये,
0: रोग मिटे हर अवखद लाये,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते आवे ठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाउ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: अवबिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाये बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरै सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यम रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाए,
0: मर वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: गाल पटावे मूर्ख मना,
1: सुत मीत कुटुंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातू लेह आने,
0: भक्त बिना पव डूबे सियाने,
1: भक्त की भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: मन सदाए हो मैं बिख फैल,
1: होए अचिंत बसै सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियानप सगली मना,
0: सात संग पावे सस्तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सुख दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाके को सलाहे,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक के गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे प्रभ आप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए अष्टपदी,
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ के गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: भक्त करो प्रभ की नित नीत,
1: एक कोट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: हर रस पावे बिरला कोए,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साधक संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जप्या प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: जिच पुन्नी श्रद्धा सा पूरी,
0: कब रहया सत्संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सो क्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सो को बिसरे जे किया जाने,
1: सो क्यों बिसरे जे सब किश दिया,
0: सो को बिसरे जे जीवन जिया,
1: सो क्यों बिसरे जे अगन मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सो क्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जनो जनम का टूटा गंड है,
1: गुर पूरा तत एह बुझाया,
0: प्रभु अपना नानक जन ध्याया,
1: साजन संत करो एह काम,
0: आप त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अपने नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिय संसार,
0: भक्ति तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: मूर्त जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का हो वतनास,
0: नानक नाम जपो गुणतास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों देख दर सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: अल्लाह को पावे संग,
1: एक बस दीजै करमया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: रब बख्शंद दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा करत प्रतपाल,
1: हाथ पुरख कारण करतार,
0: भक्त जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो होई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी सो पा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संग प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक प्रगास, श्लोक
1: स्वर्गुण निर्गुण निरंकार,
0: सुन समाधि आप, अपन किया नानका आप ही फिर जाप, अष्टपदी
1: जब अकार एहो कछ ना दिष्टेता,
0: पापन तब कहते देहो तार
1: जब धारी अपन सुन समात
0: वैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत
0: जब हरक सोगो किसै व्यापत
1: जब अपन आप आप आर ब्रह्म
0: मोह कहां किस होवत परम
1: आपन खेल आप वर्ती जा
0: नान करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल धनी
0: जब बंद मुगत कहो किस कहो गनी
1: जब एक ही हर अगम अपार
0: जब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाई
0: जब शिव शक्त कहो हुगत ठाए
1: जब आप ही आप अपनी ज्योत धरै
0: जब कवन न डर कवन कत डरै
1: आपन चलित आप करना हार
0: नानक ठाकुर एक में पार
1: अवनासी सुख आपन आसन
0: तै जन्म मरण कहो कहां विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: आपन आप ही अचरजा
0: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
0: जय कौन कमान कौन अपमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: जय शल छिद्र लगत कहो कीस
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: जय किसै भूख कवन तृप्तावे
1: करन करावन करना हार
0: नानक करते का नाहे समार
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
0: तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण
0: जय वेदक देव कहां को चीन
1: जब अपन आप उतार है
0: शगन अपशगन कहां विचार है
1: जय अपन ऊंच अपन आप नेरा
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद
0: नानक अपनी गत जान हो आप
1: जय छल छेद अभेद समाया
0: वहां कसे व्याप्त माया
1: आप उसको आपे आदेश
0: गुण का ना ही प्रवेश
1: जय एक ही एक एक भगवंता
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जय अपन आप पतियारा
0: जय कौन कथा कौन सुनने हारा
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा
0: नानक आप उसको आपे पहुंचा
1: जय आप रचियो प्रपंच आकार
0: गुण मैं की नो विस्तार
1: पाप पुण तह पई कहावत
0: ओ नरक को स्वर्ग विशावत
1: काल जाल माया जंजाल
0: मैं मोह परम पै भार
1: दुख सुख मान अपमान
0: अनक प्रकार की उपख्यान
1: अपन खेल आप कर देखै
0: खेल संकोच तो नानक एक है
1: जय अवगत भगत है आप
0: जय पसर पसार संत प्रताप
1: तू पाप का आप ही धनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आपे कौतक करे अनंत जोज
0: आपे रस भोग निर्जोग
1: जिस भावे तिस आपन नाय लावे
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे
1: बेशुमार अथाह अगंत अतुल
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार
0: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार अष्टपदी
1: आप कथे आप सुनने हार
0: आपे एक आप विस्तार
1: जात पावे तां श्रेष्ठ उपाय
0: अपने भाणे लए समाए
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए
0: अपन सूत सब जगत परोए
1: जाको प्रभु आप बुझाए
0: सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता
0: नानक सगल सृष्टि का जेता
1: जी जंत्र सबका कै हाथ
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: किस राख तिस को न मारे
0: सो मुह आज समनो बिसारे
1: सच अवर कहां को जाए
0: सब सिर एक निरंजन राय
1: की जुक्त जा कै सब हाथ
0: अंतर बाहर जानो साथ
1: गुण निधान बेअंत अपार
0: नानक दास सदा बलहार
1: पूर्ण पूर रहे दयाल
0: सब पर होवत कृपा
1: अपने कर्तव्य जाने आप
0: अंतर जामी रहो व्याप
1: प्रत पाले जी अनुभव भांत
0: जो जो रचियो सो तिसै ध्यात
1: जिस भावे तिस लय मिलाए
0: भगत करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मान्या
0: कर्म हार नानक एक जाने
1: जन लागा हर एक कै नाई
0: जिसकी आस न वृत्ति जाए
1: सेवक को सेवा बन आई
0: हुकम बोझ परम पद पाए
1: इससे ऊपर नहीं भी चार
0: जाके मन बसया निरंकार
1: बंधन तोर भय निर्वैर
0: हर दिन पूजा गुर के पैर
1: ए लोक सुखी परलोक सुहेले
0: नानक हर प्रभ आपे मेले
1: साथ संग मिल करहो आनंद
0: गुण गावो प्रभ परमानंद
1: राम नाम तत् करहो बिचार
0: दुर्लभ देखा करहो उधार
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ
0: प्राण तरन का एह स्वाव
1: आठ पैर प्रभ देखो नेरा
0: हटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा
1: सुख उपदेश हृदय बसावो
0: मन इच्छे नानक फल पावो
1: हलत पलत दोए लेहो सवार
0: राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया
0: मन बसे ते साच परीखिया
1: मातर नाम जपो लिबलाए
0: दुख दर्द मन ते पहो जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी
0: डर के निभे खेप तुम्हारी
1: एक टेक रखो मन माही
0: नानक पहर न आवे जाहे
1: इससे दूर कहाँ को जाए
0: उबरे राखन हार ते आए
1: निर पहो जपे सकल पहो मिटे
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे
1: जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख
0: नाम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाए मिटे हंकार
0: जिस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा
0: नानक ताके कार्ज पूरा
1: मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: भान सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसे सोहत निहाल
0: ताके निकट न आवत काल
1: अमर भय अमरा पद पाया
0: साध संग नानक हर त्याया श्लोक
1: ज्ञान निरंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश
0: हर कृपा ते संत भेटिया ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ
0: ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟ ਮਾਹੀ
0: ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
1: ਨੌ ਨਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ
0: ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ
0: ਕਹਿ ਨ ਜਾਈਐ ਚਰਤ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤੇ ਦਰ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ
0: ਘਟ ਘਟ ਪਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਰਨ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
0: ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੀ
0: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੀ
1: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ
0: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰੇ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ
0: ਆਪ ਡੋਲ ਨ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੇ
1: ਸਰਬ ਕਲਾਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ
0: ਬੋਲ ਨ ਪਾਈਐ ਗੁਣੈ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਗੀ ਜੋਤ
0: ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
0: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੁ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
0: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
0: ਸਰਬ ਨੈਣੇ ਆਪੇ ਖਨਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
0: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨਿਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
1: ਜਿਸੇ ਹੋਈ ਸੁਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ
0: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਆਤਮੀ ਕੀ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
0: ਪੋਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਚ
1: ਕੀ ਗਰਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੋਏ
0: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ
0: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ
1: ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ
0: ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਨਾਮ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ

डुडरावा चाटे पाए देखे लोक शेकर जाए रोटियां कारण पूरे तालाब छाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे नाम निरपो निरंकार सच नाम।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

लख ने खिंच चंगियां लख पुना प्रवाण लख तप उपर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में है छुटे हे प्राण

0: ला पर पर गड्डी लदिए पर पर परिए साथ पर पर बेड़ी पाइए पर पर गड्डिए खास परिए है जेते वर्ष वर्ष परिए जेते मास परिए जेती आर जा परिए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: काल पूर्व वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों कुबेदार जेक होय तो कुबेर तिहुरत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैवित खुमचड़ा ये सरुपतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार काम ने इज्जत पूछी है बह बह करे विचार अंधी रजित ज्ञान होनी पाहे प्रेमरदार ज्ञानी ने चेवा देवा विरूप करे सिंगार उच्चे कुके वदगा जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार तर्मी तर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठिन कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
0: महला ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी चारा मारिया करता करे सोए अगे जात न जोर है।

0: तुबा पूरा तपे का सतगिर तुबा हो काजुगरा थगन का कूड़ा गैर तुबा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अशय सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमल किया।
1: चार वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राण सटिए भी फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइए तग न टूट सपूत। महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे निदारी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना की वे तग आया पे बते।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

मला पहला जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोए ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव हज थरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखिए।

सुचे अगे रखियो कोई ना पिटो जाए सुचा हो के जे ब्या लगा पंच लोक बहती जाय सत्या किसे लगा दोख अण देवता पानी देवता बैसन तुर देवता लून पंजवा पाया किरत कहो पाक पवित पापी सतन कटिया थुका पियां तित जित मुख नाम ना उचरे।

जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गिर लटकायो। काहू लखियो हर अवाची दिसा मह, काहू पछाह को सीस नुआयो। कुब तानक पूजत है पास, कुमर तानक पूजन तायो। कूर क्रिया और ज्यो सब ही जाग, श्री भगवान को भेद न पायो। कुब तानक पूजत है पास, कुमर तानक पूजन तायो। कूर क्रिया और ज्यो सब ही जाग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कवि उबाच बेनती चाव पाई, हमरी करो हाथ दया रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रह हमारा। अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सब तुम कावहो। आप हाथ दया मोह बचावहो, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दया करिय। सब बैरन को आ संगरिय, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाढ़ कोई अवर न त्याऊ। जो अवर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दया मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजू करी हो रच्छा। राख ले हो मुहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बान दुष्टन के हंता, तमहो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दया जच्छने पजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तसिही को हमारी, सकल प्रजाजने आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बाधे कियो। कड़ कड़ के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे असूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछान, कट कट के पट पट की जान। जब उद कारख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या कारख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जे ते बदन सृष्ट सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंका निर्भका निर्लंब, याद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ विचारत पेदा, जागो भेव न पावत बेदा। ताकौ करपाहन अनुमानत, महामूढ़ काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सिव, निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बारनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा। अंडज जेरज सेत दकीनी, पुज खान बाहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो संकरी कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाय चंपावे, आज जुगा स्वरूप स्वयं पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवल उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता। जे आस तुझ तब सरणी परे, तनके दुष्ट दुख तुहुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह ऐह। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश व सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारू, कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा।
ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ, ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹ ਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭਰਾਤਾ, ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਕੋ ਸ਼ੈ ਕਰਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੋਜਾ ਪਹੇ ਦਯਾਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ, ਮਨ ਬਾਸ਼ਿਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੂਖ ਨ ਤਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜਿਲ, ਸੁਣੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਆਹੇ ਸੋ ਰਸਨਾ ਪਾਵੈ, ਸੁਣੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵੈ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਹੁ ਨਿਕਟਾ, ਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹਿ, ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ, ਚਾਉ ਪਾਈ ਕੋ ਕਹਿ ਚਾਉ ਪਈ, ਸੰਬਤ ਸਤਰਹ ਸਹਿਸ ਪਣਿਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਪੁਣ ਤੀਨ ਕਹਿਜੈ, ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਿਵਾਰਾ, ਤੀਰਸਤਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸਵਈਆ,

मात एक न मानियो। सिमरेत शास्त्र वेद सब बह भेद कह हम एक न जानियो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखानियो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै।

अंत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किनै तेरा, अपना आप तू जान हे। जी अजंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखाणा, आख ता वेखा हे, सब तू है जिन जगत उपाया, कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीने, सच्चा मन वसाया। जी अजंत सब तुद उपाय, वेख परसन आया, लाभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा, तन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता, केरी बिखम मार्ग चलना। लाभ लोभ अहंकार तज त्रिसना, बहुत नाही बोलना, कन्ने हो तिखी वाल हो निकी, एत मार्ग जाना। गुरप्रसाद जिनी आप तजिया, हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हो तिव चल हो स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हो तिव चल हो जिना मार्ग पावे। कार कृपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा त्यावहे, जिस नो कथा सुनाए हे अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावे। कह नानक सचे साहिब, ज्यो भावै तिवै चलावहे, एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्द सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया, एहो तनकै मन वसिया, जंतर हो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे करह गल्लां, गल्ली किनै ना पाया, कह नानक शब्द सोहिला, सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिन्नी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिन्नी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहज से, पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमे सहज न उपजै, बिन सहजै सहसा न जाए, नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सहस जीओ मलीन है, कित संजम धोता जाए, मन तो वहो शब्द लग हो, हर सो रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एह सहसा इव जाए। जी अह मैले बाहर हंदरमल, बाहर हंदरमल जी अह ता मैले, तिने जन्म जूवै हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहो विसारिया, वेदा मह नाम उत्तम सो सुनहे नाही, फिर जो बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनि जन्म जूवै हारिया। जी हंदरमल बाहर हंदरमल, बाहर

ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है, जन्म तो अखां दे खुलदियां ही मनुख दियां अखां कुछ खोज रही ने, लग रही ने। कुछ विद्वान ऐसा कहने एक तलाश का ना ही मनुख है और मनुख है जीवन भर की तलाश। जन्म तो ही मनुख की चेतना मनुख के प्राण कुछ लभ रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। खोज खोज के जो लभे है जो मिले है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं, इसका बोध भी कोई नहीं। तो तलाश जारी है जीवन दर जीवन जन्म दर जन्म अनंत काल तो। इस वास्ते कुछ विचारक कहने ने अनंत तलाश का ना ही मनुख है, मनुख है एक तलाश का नाम, कुछ खोज रहे कुछ लभ रहे। दोहरावा मैं, खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी नहीं, इसका बोध भी। फिर विद्वान कहने ने मनुख तृप्ति लभ रहा है, तृप्ति तो बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख रजेवा लभ रहा है, रजेवे तो बिना मनुख नु और कुछ भी नहीं चाहिए। जो रज जाए उन्हों राजा कहने ने, राजा दे अर्थ जो रज गए और कोई इसके अर्थ नहीं है। जो रज गया राजा, जो भूखा है भिखारी, तलाश है राजा होने की, जमया भिखारियां की तरह जीविया भिखारियां की तरह, यकीन जानो मर गया भिखारियां की तरह। मरदे दम तक तलाश ते जा रही है, खोज ते जा रही है। खोज खोज के जो लभे है उस नाल ते रजेवा होया नहीं, तृप्ति होई नहीं। तो जो रजेवा ही नहीं होया तो फिर राजा नहीं है, कि जे राजा नहीं है तो फिर भिखारी है। जे मंग जा रही है तो मंगता है, जे भुख जा रही है तो भिखारी है। भुखा भिखारी होता है, रजे होया राजा होता। प्रथम मनुख की खोज का केंद्र जमीन ए धरती रही है। धरती ने मनुख की झोली विच अन्न पाया, धन पाया, तन दियां जितनियां लोड़ां ने इहदी झोली नूं भरे, लेकिन जमीन मनुख नूं रजा नहीं सकी, रजा नहीं सकी, तृप्ति दे नहीं सकी। इतनी जमीन दे आउंदिआं मनुख भुख है, मनुख भुख है। मैं फिर अर्ज करां, भुखे नूं ही भिखारी कहिंदे ने, रजे होए नूं ही राजा कहिंदे ने। रज गया राजा, अजे भुखा है भिखारी। भुख ते मंग ते मजबूर करे, कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अनंत जन्मां तों ए भुख जारी है। तन दियां लोड़ां ने लोड़ां बड़ी सीमित ने, मन दा लोभ है लोभ सीमित नहीं है, नहीं है। ज्ञान पूर्वक सरवण करना, तन दियां लोड़ां कोई बहुत ज्यादा नहीं, जो पशुआं दी लोड़ां ने वही साड़ी लोड़ है। पर तन दी लोड़ नूं जद मन लोभ बना लैंदा है, इहदे ते इक निक्का जिहा मैं उदाहरण दे रहा। जैसे भोजन दी भुख है तो ठीक है, मनुख दो रोटियां तीन रोटियां खा लेगा, चलो चार पांच खा लेगा, त्रिपत हो गए, तन ते रज गए, तन ते राजा हो गए। लेकिन मन कहता है स्वाद ते आ रहा है, जे और खाई भुख नहीं है, ये खा रहे है, ये लोड़ नहीं है लोभ बन गया है, ये तन दी लोड़ नहीं है, ये मन दा लोभ बन गया है। इस वास्ते कई ते कहने ने कि करिए, पेट ते भर गया है पर मन नहीं भर गया, मन भरदा भी नहीं। क्यों? तन दियां लोड़ां मन दियां लोड़ां ही नहीं है, पर तन दियां लोड़ां नूं
भ्रांति करके मन ने अपनिया लोड़ा समझ दे। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मन मन ले पर मन ले। आपकी ज्ञात ले अर्ज करा, जो मन मन लेंदा है वो है, जो मन नहीं मनता वो मन की दुनिया च नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वो वस्तु वो हस्ती है या नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है मन मनता है कि नहीं। अक्सर मनुख कह देता है पढ़िया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, सुनिया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, वेख्या तो है पर की करिए मन नहीं मनता। जो मन मनता ही नहीं वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा। मन का हिस्सा वही वस्तु वही हस्ती बनती है जिन्हों मन मन लेता, मन मन लेता, मन पदार्थ नू मन लेता है परमात्मा नू नहीं मनता, मन परिवार नू मन लेता है निरंकार नू नहीं मनता। एक बहुत वड्डी सच्चाई है जिन्हू खुले दिल नाल कबूल करना है। मन धन नू मन लेता है, मन धर्म नू नहीं मनता, मन पूरे दे पूरे परिवार नू मन लेता है, संसार नू मन लेता है, मन करतार नू नहीं मनता। जी तुसी आखो साडा मन मनदा है क्योंकि गुरुद्वारे आया, मन मनदा है ताई ते आया। कोई मनुख कह सकदा सी मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, कथा कीर्तन सुन रहे हैं, मन मनदा है। गुस्ताखी माफ, माफ कर देना, गुरबाणी इस तरह कहती है कोई लखा करोड़ा च एक अद्धा मन मनता है बाकी नहीं मन। इस संबंध च मैं दो श्लोक थोड़े सामने रख रहे हैं ताकि गल पूरी स्पष्ट हो जाए। ये दो श्लोक एक ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का, एक भगत सिरमौर श्री कबीर जी। ये दो श्लोक जिन्हां बाणियां विच हैगे ने उन्हां बाणियां का सिरलेख इको ही है, गौड़ी महला पंजवां बावन अखरी। धन गुरु अर्जन देव जी का इत्थे श्लोक बावन अखरी बाणी का नाम है, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरी। अखरां दी महिमा दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने पट्टी लिखी है आसा राग दे च, गुरु अमरदास जी ने पट्टी लिखी है आसा राग दे च। अखरां दी महिमा दे उत्ते बावन अखरी लिखी है गौड़ी राग दे च गुरु अर्जन देव जी ने, और गौड़ी राग च भगत कबीर जी अखरां दी महिमा गाई है। क्यों? आवास ते पशुआं को भी है, कौआ भी काय काय करता है, शेर भी गरजता है, गौ भी बोल, पंछी भी चहचहाते हैं। आवास ते पशुआं को भी है, अल्फाज नहीं है, धुन ते पशुआं को भी है, अखर नहीं है, अखर नहीं। तो धुन तो आवाज तो पशु की होंद का ते पता चल जाए, और केड़ा पशु है यह भी पता चलता है भी ये शेर की गर्जन है, इस आवाज तो ही पता चलता पे है कोयल है, इस आवाज तो ही पता चलता पे है कौआ है। आवाज तो यह तो बोध होंदा है कि आवाज किस दी है, पर जिस दी आवाज है उसनों पूछिए तू कितों आया, कितने जाना है, की लभ रहे हैं, इस सब कुछ कहने वास्ते उदे कोल अल्फाज नहीं है, अक्षर नहीं है। इस वास्ते पशुआं दा सारे दा सारा विकास रुकया, हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ने, हजारां साल पहले जिथे मनुख सी अज नहीं है। इसका जिन्ना बैरूनी विकास होया सब अखरां दे आसरे दे होया, अखरी नाम अखरी सारा, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण वाण,
ਆਖਣਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਣ। ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਤਨੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਮਰ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਪਾਏ ਨੇ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਲ ਹੈ ਫੀ ਮੇਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਪੜੀਏ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਨ, ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨਿਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਨ। ਪੰਜ ਦਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਜਲਦਬਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ 10-12 ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਦ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਸੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਸੁਖਨ ਨਾ ਗੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਕ, ਐਬੋ ਹੁਨਰ ਨਿਹੁਫਤਾ ਬਾਸ਼ਕ। ਸਿਰਫ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਖੜਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਖੜਾ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਖੋ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂ, ਗੁੰਗੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਇਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਗੁੰਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਵੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗੁੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੁੰਗਾ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਭਗਤ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਰਾ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਬਣਦਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾ। ਦੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਪਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਸਤੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੋ ਬੋਲ ਐਸੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਪ੍ਰੀਤ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਝਗੜੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਧਰਤਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਹ ਅੰਧੇ ਦਾ ਅੰਧਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ,
ਕਵਿਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਚ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੋਵਰ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਲ। ਆਪਦੀ ਗੈਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਬਗੀਚਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਕਿਆਰੀ ਬਣੀ, ਇਧਰ ਕਿਆਰੀ ਬਣੀ, ਇਧਰ ਫੁੱਲ ਕਿੜੇ, ਇਧਰ ਫੁੱਲ ਕਿੜੇ, ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਰੰਗਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਵਿਆਹ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੋ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰਸਤੇ ਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਗੀਚੇ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾ। ਜੈਸੇ ਬਗੀਚੇ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਗੀਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਚ ਕਦਮ

कौन परमात्मा और थोड़े को इतना महान ज्ञान, तुसी उस परमात्मा नु किवें जाने, केड़ी साधना कीती? कबीर कहंदे ने, कहो कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर। साडा मन हरी नु हरी करके मन गया, जैसे मन पुत्र नु पुत्र करके मन लैंदा, मित्र नु मित्र करके मन लैंदा, पत्नी नु पत्नी करके मन लैंदा, पति नु पति करके मन लैंदा, मां नु मां करके मन लैंदा, पिता नु पिता करके मन लैंदा। जिन्हों मन लैंदा है पर उदी याद भी चलती है, मंगदा भी, और पुत्र नु याद करने लिए वाजा वजाने की लोड़ है, मित्र नु याद करने वास्ते तबला खड़काने की लोड़ है, पति नु याद करने वास्ते पत्नी नु याद करने वास्ते क्या कथा कहानियां की लोड़ है, फिलसफा घोटन की लोड़ है। इसकी याद आपे ही आऊंगी, पुत्र की याद आपे आऊंगी, मित्र की याद आपे आऊंगी, भरा की याद आपे आऊंगी, पति की याद आपे आऊंगी, पत्नी की याद आपे आऊंगी। रह गई गल परमात्मा नु याद करना, इनू याद करना हो तबले बजाओ, वाजे खड़काओ, तबले खड़काओ, छैने खड़काओ, गला फाड़ फाड़ के सुरदिश करके अलाप करो, दिमाग दिया नसा नु ढिला करके फिलसफा घोटो, कथा कहानियां करो, सेवा करो, पुन करो, दान करो, अमृत वेले उठो। मैं दावे नाल कहना सब कुछ कर दिया भी उदी याद नहीं आती, नहीं आ जिस तो मेरा मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता, मन उसनु याद नहीं करता, उदे लई कोई समा नहीं, उदे लई कोई वक्त। कबीर कहंदे मैं साधना पिया करदा कि मन नु मनाण दी, मन परमात्मा नु परमात्मा करके मन लगे, मन लगे, दिन रात यतन पिया करदा। पर मैं अवधि ज्ञात लई अर्ज करा, एक हकीकत है, मन नहीं मनदा उन्हां दा जो गुरुद्वारियां च नहीं आउंदे, मंदरां च नहीं आउंदे, उन्हां दा मन भी नहीं मनदा जो आण के बैठदे ने, नहीं मनदा। अपने अनुभव द्वारा कहना, नहीं मनना। तुसी आखोगे एक गलत गलत बयानी है, मन दा कांते आ गए तां पाठ कर ले, तां गुरुद्वारे आ गए, तां मंदिर आ गए, तां मस्जिद विच आ गए नमाज पढ़न, खुदा नूं खुदा करके मनदे हां, परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदे हां, नहीं मनदे। फिर क्यों आया, ये फिर गुरु अर्जन देव जी खोलदे हैं, और गजब की गल ध्यान नाल सुनना, मम्मे अखर कोई खोल, मां अखर वो बावन अखरी कबीर दी, ये बावन अखरी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी। महाराज इस श्लोक विच कहंदे ने, मनुख परमात्मा नु मनदा नहीं है, मनुख परमात्मा कोलो मंगदा, मनदा नहीं है। मंग पूरी हो जाए तो संबंध टुट जाता है, मंग ना पूरी होवे तो संबंध टुट, गल खत्म, संबंध ते सिर्फ मंगदा। तो हुण अपने पावन पवित्र श्लोक दे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, मम्मा मांगन हार इयाना, देन हार दे रहो सो जाना, मंगदा ऐ दे ऐ दे ऐ दे ऐ दे। क्या परमात्मा देंदा है? देंदा है, आख है, मंगे दे दे, दात करे दाता दे, मंगदा है वो देंदा है, मंगदा है वो देंदा है। जो दे ही जा रहे हैं उस नाल जुड़ी जा रहे हैं, जो देंदा पे है उस नाल टूटी जा रही है। हकीकत है, मम्मा मांगन हार इयाना, इयाना है जो मंगण का संबंध परमात्मा नाल जोड़दा है, इयाना है ये जो परमात्मा नाल मनण का संबंध जोड़दा है, मनदा है, प्रभावित है, वो इतना स्याणा है। महाराज कहंदे ने, मन्ने की गत कही ना जाए, देखो करे पछे पछता, उदी ते महिमा बयान ही नहीं की जा सकती जो परमात्मा नूं परमात्मा करके मनदा। इतनी सौखी खेड ना समझा सी, मनदे आ गुरु नूं, आए आ गुरुद्वारे, नहीं मंगदे आ, कुछ चाहिदा है, कुछ कामनावां संसार तो नहीं पूरियां होंदियां, शायद गुरु तो पूरियां, कुछ कामनावां परिवार तो नहीं पूरियां होंदियां।
शायद गुरु तो भूल गया। कुछ खेड बाजार दे च नहीं बन सकी, शायद गुरु कोल बन गया। कोई खेड मित्रा पुत्रा कोल नहीं बन सकी, शायद प्रभु कोल बन गया। मंगण दस गुरु अर्जन देव जी महाराज फिर उसे ही श्लोक दे च कहने ने, मम्मा मंगन हार याना देन हार दे रहो सुजाना, पर जो मांगे तो मांगे बिया जानते कुशल ना कबहु थिया। बिया लेंदी पंजाबी दा अक्षर होवे, इहदे अर्थ बन जाने ने होर बिया मंगदा है होर मंगदा है। बिया शब्द चढ़दी पंजाबी दा होवे अमृतसर जलंधर दे जो बोली जाती, पर बिया दे अर्थ ने परूथा। बई रोटी है, बिया भोजन है, परूथा भोजन है। इत्थे जो अर्थ बनते ने वो लेंदी पंजाबी दा शब्द है होर होर मंगदा है। जो मांगे तो मांगे बिया, परमात्मा को जो कुछ भी मंगदा है परमात्मा नु छोड़ के होर होर मंगदा है। ऐ दे ऐ दे ऐ दे ऐ दे, ऐ मेरे घर आ जाए, ए मेरे घर आ जाए, ए मेरे घर आ जाए। फिर परमात्मा आखे मैं भी आ जावा तेरे घर, ना ना तेरी कोई लोड़, तू एक बस तेरी लोड़। होर होर मंगदा है परमात्मा को लो, परमात्मा को लो परमात्मा नु नहीं मंगदा। इस वास्ते होर होर ते मनुख कोल हो जांदा है, परमात्मा नहीं होंदा। नहीं आया भी नहीं।

शरीर भी अचेत हो गया है। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत दासर है। ये पंजे दे पंजे तत् जड़ ने, जड़ दी संगत करदिया करदिया सूक्ष्म शरीर भी जड़ हो गया, भाव अचेत हो गया, सौ गया। तो मैं कई दफा अर्ज की है, वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप वाहेगुरु नु सुनान वास्ते नहीं, इस सुत्ती हुई चेतना नु जगान वास्ते, इस सुते हुए मन नु जगान वास्ते। सिमर सिमर गुर सत गुर अपना, सोया मन जागाई। ये कितना जपिए, बारंग बार बार प्रभ जपिए, जपी जा उतने चिर तक जपी जा जितने चिर तक मन पूरा जागदा नहीं। पूर्ण तौर ते जागया होया मनुख सूक्ष्म तल ते महाराज कहंदे ने इस ग्रह में कोई जागृत रहे, इस ग्रह में कोई जागृत रहे। साबत वस्तु ओ अपनी लवे, साबत वस्तु की परमात्मा परम रस परम आनंद। ये किसनों प्राप्त होंदा है? जेदा मन पूर्ण तौर ते जाग गया। कहिंदे ने एक भाग ही जागे, मन दे नौ भाग सुते पे ने। तो उस एक भाग नू थोड़ा जिहा पदार्थां दा बोध है, थोड़ा जिहा संसार दा बोध है, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वसे गुरबाणी एक होर शब्द वर्दी है, जागत सोया जन्म गवाया। ये जागदा दिखाई दे रहा है जबकि टोटली सुता पे है, कोई परमात्मा का पता नहीं, कोई परम रस का पता नहीं, कोई समाधि का ज्ञान नहीं, कोई प्रेम का पता नहीं, कोई उस महान चानण का पता नहीं। जागत दिखाई दे रहा है, जागदा सोया इति सूक्ष्म शरीर के तल ते सोया होया, सुता होया। जागत सोया जन्म गवाया। वाहेगुरु वाहेगुरु दे जप नाल जद कोई सूक्ष्म शरीर नो अद तो वद जगा लैंदा, ऐसे मनुख नु कोई गैबी शक्तियां मिल जांदियां ने, जिन्हों रिदियां सिदियां भी कह देंदे। ऐसा मनुख उस सूक्ष्म शरीर नो अपने शरीर दे चों कढ भी सकदा है, किधरे लै जा भी सकदा है, फिर वापस ले आ सकदा है। तुसी आखोगे मैं की आखदा पिया, साडे गुरमत दे च भी ऐसा हुंदा रहा, बाबा राम राय करदे रहे। हर दूजे तीजे महीने वो ऐसा कर लैंदे सन, फिर वापस आ जांदे सन। एक दफा अपनी पत्नी नूं कहा, मैं एक हफ्ते बाद आना है, मेरे इस देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें, क्योंकि कुछ मसंद मेरे दुश्मन ने ते मैनू मुर्दा जान के किधरे होर अनर्थ ना कर बैठन। पत्नी ने कहा, मैं दसांगी नहीं किसे नू, लेकिन मसंदा नू पता चल गया। तीसरे दिन उते अर्थी सजा के ले आए, बई राम राय गुजर गए ने, खत्म हो गए, आपां ले जाना है, चिता जलानी है। हुण ये मसंद बहुते सन भ्रष्ट हो गए सन, इन्हां दी गलत वरतों राम राय करदे रहे तो मसंद अज राम राय दी गलत वरतों करन लग पए। इस तरह ही होंदा है, चिता ते लिटा दिता है शरीर, मरिया होया शरीर ते आकड़ जांदा है, पर तीन दिन दा नहीं आकड़िया होया सी, मुर्दा नहीं सी, पर लिटा दिता है। कफन पा के ले चले, रुदन करदी रह गई बाबा राम राय दी पत्नी, शोर शराबा पांदी रह गई। तुसी जिंदा मनुख रह जा रहे हो शमशान घाट विच, पर नहीं मन्ने मसन, चेता ते रख दिता है, अग भी ला दिती है, अद्धा शरीर जल गया। गुरु प्रताप सूरज दी कथा जो सारे इतिहासक स्थानां दे छौंदी है।

मन पूरी एकाग्रता नाल सुने, और जिस दिन सुनेगा मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुरु की सुख सुने। एक भी सिखिया सुन ली, एक भी पंक्ति एक भी शब्द सुन लिया और अंदर वस गया, तो गुण पार प्रगट हो जाएंगे, दया प्रगट हो जाएगी, प्रेम प्रगट हो जाएगा, ज्ञान प्रगट हो जाएगा, आत्म दृष्टि प्रगट हो जाएगी, सारा संसार निरंकार दा रूप दिखाई देन लग पाएगा। इस तरीके नाल सतगुरु कहिंदे ने ओ गुरु है, अखीर दिच कहिंदे ने ओ प्रसाद है। ए अवस्था उसकी बख्शिश नाल बनेगी, तेरी मेहनत नाल नहीं, उसकी रहमत नाल बनेगी, तेरे प्रयास नाल नहीं, उसके प्रसाद नाल। अपने आप दिच ए प्रसाद शब्द चूंकि बहुत गूढ़ भाव अपने विच छुपाई बैठा है, इसका खुलासा कल दिन दे समय मैं थोड़े सामने करन दी कोशिश करांगा। प्रसाद है, साड़ी मेहनत नहीं उदी रहमत है, साड़ा प्रयास नहीं उदा प्रसाद है। क्योंकि एक भी भगत ने ऐसा नहीं आख्या कि मेरे प्रयास नाल हे परमात्मा तू मैनू मिले है, मेरी मेहनत नाल मैं तेनू प्राप्त कीता है। कहिंदा नहीं, तू मिले है तेरी रहमत, मेरी मेहनत नहीं, तू मिले है मेरा प्रयास नहीं तेरा प्रसाद। लेकिन फिर भी भगत बहुत प्रयास कर दें, अमृत वेले उठना है, जप करना है, तप करना है, नियम पूर्वक इशनान करना है, सब कुछ कर देना है। जिन्हें नाम ध्याया गए मुशक्कत गाल, बड़ी गाल ना गाल दें, बड़ी मुशक्कत कर देने, पर मुशक्कत कर करके एक ही गल का पता चलता है कि मुशक्कत नाल नहीं मिलेगा, बस इन्नी गल। मेहनत कर करके एक ही ज्ञान मिलेगा कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा, प्रयास कर करके एक ही पता चलेगा एक गल का कि प्रयास नाल नहीं मिलेगा, वो जद मिलता है उदा प्रसाद, वो जद मिलता है उदी रहमत उदी किरपा, साडा कर्म नहीं उदी किरपा, साडा प्रयास नहीं उसका प्रसाद, साडी मेहनत नहीं उसकी रहमत। अगर मेरी मेहनत नाल मैनू परमात्मा मिल गया तो मेरी मेहनत उसकी कीमत है, इतनी मैं मेहनत करांगा मिल जाएगा, किसी नूं भी मिल जाएगा, फिर परमात्मा अमुल नहीं है। फिर ये शब्द कहने बनते नहीं, कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समा, तेरी कीमत नहीं है, तेरा कोई मुल नहीं है, मेरा कोई भी कर्म तेरा मुल नहीं है, मेरा अमृत वेले का उठना तेरा मुल नहीं है, मेरा वाहेगुरु वाहेगुरु का जप करना तेरा मुल नहीं है, तीर्थां दा इशनान दान पुन सेवा ये तेरा मुल नहीं है, राम राम दा रटन ये तेरी कीमत नहीं है। तू मिले है मेरी मेहनत नहीं तेरी रहमत, तू मिले है मेरा प्रयास नहीं तेरा प्रसाद। पर जद मिले है प्रसाद ही है, जद मिले है उदी रहमत ही है, तो मेहनत करन दी की लोड़ है। यकीन जानो मेहनत कर करके ही पता चलता है, नहीं पता चलता, मेहनत कर करके इतना ही पता चलता है कि मेहनत नाल नहीं मिलेगा। गुरु नानक इसनों इस तरह कहने ने, गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता मल्ला पहला। गुरु नानक दी बाणी, गाल नाल नहीं मिलिया, सेवा नाल नहीं मिलिया, दान नाल नहीं मिलिया, पुन नाल नहीं मिलिया, कोई दान करोड़ां दा उसकी कीमत नहीं, कितनी सेवा जीवन भर दी उसकी कीमत नहीं, कितना जप जिंदगी भर दा उसकी कीमत नहीं, नहीं मिलता, ना कीते जप नाल मिलता है, ना दिते दान नाल मिलता है, ना कीती सेवा नाल मिलता है। फिर किस तरह मिलता है? वो मिलता है अचनचेत। गाल ना मिलियो सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता अचनचेत मिले। तो अचनचेत किस तरह मिल गया? उदा प्रसाद उदी बख्शिश उदी रहमत, मेहनत नहीं उदी रहमत।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जां कॉल किरण @604-581-1900

निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। मनुख की बरतर परिपूर्ण परमात्मा ने इस ढंग दी कीती है। इस दी दुनिया कुछ बाहर पई है, कुछ अंदर है। जैसे शरीर दी अंदर दी पवन दा बाहर दी पवन नाल संबंध जुड़े हुए, शरीर दे अंदर पए हुए पानी दा बाहर दे पानी नाल संबंध है, शरीर दी मिट्टी दा बाहर दी मिट्टी नाल जुड़िया हुआ संबंध है। असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। एक श्वास असी बाहर कढ़दे हाँ, एक अंदर लै लैंदे हाँ। जे सिर्फ अंदर लईए तो कहीए बाहर नहीं कढ़ना, तां वी असी नहीं रह सकांगे। और जे बाहर ही श्वास कढ़ दईए तो फिर अंदर ना लै जाइए, तां वी जीवना औखा होवेगा। इत्थों अध्यात्मवादियां ने यह तत्त कढ़िया है कि असी कुछ बाहर हाँ, कुछ अंदर हाँ। साड़ी दुनिया कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। कुछ बाहर दी दौलत है, कुछ अंदर दी दौलत है। कुछ बाहर दा कुटुंब परिवार है, कुछ अंदर दा कुटुंब परिवार है। बाहर दा जो कुटुंब परिवार है साडा, उसकी तो सूझ बूझ सानू पूर्ण रूप विच है, पर अंदर दा साडा की परिवार है, इसकी जानकारी गुरु नानक देव जी महाराज कराते हैं। दूसरी उदासी का भ्रमण करके जब आप तीसरी उदासी की पूर्ण रूप से तैयारी करन लगे, तो आप दी माता जगत माता तृप्ता जी ने आपनू प्रेरिया कि हुण तुसी कुटुंब वाले हो, परिवार वाले हो, थोड़े बच्चे हैगे, थोड़ी पत्नी भी हैगी, और परिवार विच रहना भी थोड़ा धर्म है, मुख्य धर्म है। तो उस वक्त गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी माता प्रति जो बचन उचारण किए ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बकायदा दर्ज ने, आपने फरमान किया, माता मैं जिधर भी जाना अपना परिवार नाल लेके जाना, और मैं कदी परिवार तो बिछड़िया ही नहीं, परिवार मेरे नाल होंगे जिस पासे भी मैं जावां। तृप्ता जी हैरान हो गई कि परिवार नाल जांदा, असी सारे इत्थे ही आउंदे, कोई नाल गया नहीं, मरदाने ते बाले तो बिना परिवार दा कोई फर्द नाल नहीं। पर नानक जी कह रहे ने परिवार मेरे नाल है, और मैं जिधर जाना परिवार मेरे नाल जांदा है। ये ते सुदाइयां वाली गल होई। अक्सर संसार दी दृष्टि विच भगत लोग महापुरुष पागल ही कहलाए गए, उन्होंने पागल ही आख्या गया। कारण उन्होंने विचार, उन्होंने बोल समाज का हिस्सा नहीं बनते सन, व्यवहार का हिस्सा नहीं बनते सन। रोजमर्रा की जिंदगी उन्होंने विचार, उन्होंने व्यवहार, उन्होंने वचना ढालना बड़ी औखी गल हो गई। जिस तरह पागल के बोल संसार नाल तालमेल नहीं खाते, समाज का हिस्सा नहीं बनते, भगतों के बोल भी समाज का हिस्सा नहीं बनते। इस वास्ते जिथे पागल समाज नालों टुट जाता है, करीबन करीबन भगत भी समाज नालों टुट जाते हैं। अज तक का इतिहास यही कहता है। और गुरु नानक की बाणी ने तो साफ फैसला कुन गल कह दिती है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। भगत ते संसारी का जोड़ कदी जुड़िया ही नहीं, मेल कदी होया ही नहीं। जब गुरु नानक देव जी महाराज ने यह आख्या कि परिवार मेरे नाल जांदा है, और मैं जिधर जाना परिवार अंग संग है, तो तृप्ता जी हस पईआं, आखण लगे नानक जी तुसी वाकई सुदाइयां दी तरह गल करन लगे। जगत ते सुदाई कहिंदा ही सी बई तू सुदाई है, अज मैनू भी कहना पएगा ये बोल सुदाइयां वाले ने, पागलां वाले ने, परिवार ते सारा इत्थे ही हुंदा है। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, मां ये तो सोचण सोचण की गल है ना, ये तो मनुख दे मनण मनण की गल है। मैं जो कह रहा बिल्कुल सही कह रहा, मैं जिधर जाना मेरा परिवार मेरे नाल जांदा है। तो गुरु नानक देव जी महाराज की माता जी ने पूछ लिया, ये दस जिहड़ा परिवार नाल जांदा है उहदे च मां है, पिता है? साहब कहन लगे, हाँ जिहड़ा परिवार मेरे

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण @604581190।